उठती उष्ण तीरिश्पा अष्टवंगरी कई सिर्फ कदु जक्त मंग कई तुनुत करंची एरुपा बन्ना पुग्यु मंग